वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना हेमलता कोनवड़ के स्वर में।

हेमलता कोनवड ने गाई संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुहासिनी कोरटकर के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

संत जनाबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुहासिनी कोरटकर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास लिखित ये भक्ति रचना चंद्रशेखर गाडगिळ के स्वर में, जिसे स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनीस ने।

चंद्रशेखर गाडगिळ के स्वर में संत तुलसीदास रचित ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे स्वरबद्ध किया था रविन्द्र खासनीस ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: आप सुन रहे थे श्रीमती गीता जावड़ेकर का गायन। आपके साथ तबले पर श्री शंकर कौड़ी मट्टी, हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्री परमेश्वर हेगड़े का गायन, राग शंकरा। ख्याल रूपक ताल अनाहत नाद, द्रुत तीन ताल ऐसो धी टलंगर।
1: You are listening to vocal recital by Shrimati Geeta Javadekar. She was accompanied on tabla by Shri Shankar Kavdimatte, harmonium by Shri D. Kumaradas. Continuing the concert, now listen to vocal recital by Shri Parmeshwar Hegde, Rag Shankara. Khyal Rupak Tal Anahatanad, Drit Tintal Aiso Dheetalangara.

0: अब तक आप सुन रहे थे श्री परमेश्वर हेगड़े का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित रघुनाथ नाकोड़, हारमोनियम पर श्री वसंत कनकापुर साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय श्री परमेश्वर हेगड़े। ही वाज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित रघुनाथ नाकोड़, हारमोनियम बाय श्री वसंत कनकापुर। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आकाशवाणी धारवाड़ एनी टाइम इंडियन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर ख्याल गायन. कलाकार हैं अरुण कुमार बासु. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गौतम चक्रवर्ती और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दौलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर ख्याल गायन. कलाकार हैं अरुण कुमार बासु.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग दरबारी कनाड़ा. Our artist is Arun Kumar Basu. Accompanying our artist on the tabla is Gautam Chakraborty, and on the harmonium is Chittaranjan Doloi. Listen now to a khayal in the rag Darbari Kanara. Our artist, Arun Kumar Basu.

0: 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत.
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग दरबारी कानरा. आवर आर्टिस्ट वाज अरुण कुमार बासु. अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज गौतम चक्रवर्ती एंड ऑन द हारमोनियम वाज चित्तरंजन दोलुई. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

अभी आप राग दरबारी कनाडा पर ख्याल गहन सुन रहे थे। कलाकार थे अरुण कुमार बासु, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गौतम चक्रवर्ती और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चितरंजन दोलोई। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है राग।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गायन. प्रस्तुत है राग बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं कैसे सुख सोए. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज रहो मोरे प्यारे रघुवीर.
2: Listen to Hindustani classical vocal recital by Vidushi Padmavati Shaligram. She is presenting Rag Bihag. Vilambit Bandish, set to Ektal. Bol, Kaise Sukh Soe. Drut Bandish, set to Teen Tal. Bol, Aaj Raho More Pyare Raghuveer.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग बिहाग। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वालावलकर। अब आप सुनिएगा विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं रस कानहरी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बंसी वाला कान्हा।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You are listening to Rag Bihag by Vidushi Padmavati Shaligram. Accompanying her on tabla was Pandit Rajendra Antarkar, and on harmonium was Purushottam Valavalkar. Continuing the concert, now listen to Rag Durga by Vidushi Padmavati Shaligram. Vilambit Bandish, set to teen taal, bol ras kanahari. Drut bandish, set to teen taal, bol bansi wala kanha.

0: अभी आप विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा सुन रहे थे। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने, सारंगी पर लियाकत अली खां और हारमोनियम पर थे बबन मांजरेकर। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल बाय विदुषी पद्मावती शालिग्राम। द एकॉम्पनिंग आर्टिस्ट्स व पंडित राजेंद्र अंतरकर, लियाकत अली खान एंड बबन मांजरेकर ऑन तबला, सारंगी एंड हारमोनियम रिस्पेक्टिवली। This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मल्लिका बनर्जी का गाया राग ललित. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं रैन का सपना मैं कासे कहूँ, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं जोगिया मोरे आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Mallika Banerjee. First listen to Rag Lalit. The Vilambit Khayal is said to Ektal. The words are, Rain ka sapna mein kaise kahun. The Drut Khayal is said to Teental. The words are, Jogia more aaye. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi.

0: अभी आप मल्लिका बैनर्जी का गाया राग ललित सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग अहीर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दीनों करतार। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं गरीब नवाज जग निस्तार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग ललित बाय मल्लिका बैनर्जी। नाउ लिसन टू राग अहीर भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल, द वर्ड्स आर दीनो करतार। द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर गरीब नवाज जग निस्तार। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी।

0: अभी आप मल्लिका बैनर्जी का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग अहीर भैरव बाय मल्लिका बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। This program is the presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन. लीजिए सुनिए सितार पर राग सरस्वती. आलाप जोड़ झाला के पश्चात विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सितार एंड सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित पुष्पराज गोष्ठी. लिसन राग सरस्वती ऑन सितार, आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल.

यह था सितार पर राग सरस्वती। तबले पर संगत कर रहे थे भूषण परचुरे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुष्पराज कोष्टी अब सुरबहार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज। लीजिए सुनिए आलाप जोड़ झाला, गत चौताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग सरस्वती ऑन सितार अकंपनीड ऑन तबला भूषण परचुरे। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित पुष्पराज कोष्टी प्रेजेंट्स राग खमाज ऑन सुरबहार। आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: आप सुन रहे थे सुरबहार पर राग खमाज, पखावज पर संगत कर रहे थे विवेकानंद कुरांगले। इसी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग खमाज ऑन सुरबहार, accompanying him on Pakhavaj, Vivekanand Kurangale. With that, we conclude Sitar and Surbahar recital by Pandit Pushparaj Koshti. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग बिलाश खानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं देवाशीष चौधरी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलाश खानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recital. Listen first to a sitar recital in the rag Bilash Khani Todi. Our artist this morning is Shiv Shankar Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Devashish Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Bilash Khani Todi. Our artist, Shiv Shankar Mukhopadhyay.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विलास खानी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिव शंकर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे देवाशीष चौधरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग गुरजोड़ी तोड़ी पर

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुरजोड़ी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिवशंकर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे देवाशीष चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Gurjari Todi. Our artist this morning was Shivshankar Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Chaudhuri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी, तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलीकर ऑन द वॉयलिन.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मीता पंडित का गाया राग शंकरा. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल है सो जान लिया बालम्बा और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है आली मोरी नीर भरन कैसे जाऊं. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Shrimati Meeta Pandit. She first presents Rag Shankara, in which she will present Bada Khayal, set to Vilambit Tilwada Tal. The lyrics are So Jaan Liya Balamwa. This will be followed by Chota Khayal, set to Drut Teen Tal. The lyrics of this are Ali Mori Neer Bharan Kaise Jaun. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग बसंत। मध्य लय ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं फगवा ब्रिज देखन को चलरी। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं पिया संग खेलोरी। तबले पर आपके साथ संगति की है प्रसून चटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग शंकरा प्रेजेंटेड बाय श्रीमती मीता पंडित। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, शी विल नाउ रेंडर राग बसंत। शी विल फर्स्ट सिंग द मध्यम लय ख्याल फगवा ब्रिज देखन को चलरी, विच इज सेट टू तीन ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल पिया संग खेलोरी। The Chota Khayal is set to Drut Teen Tal. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग बसंत सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू हैड बीन लिस्निंग टू राग बसंत प्रेजेंटेड बाय श्रीमती मीता पंडित। And with that, we come to the end of this vocal recital by Srimati Meeta Pandit. She was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Shri Bharat Bhushan Goswami. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास स्वामी की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेड़नेकर ने गाई समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुहास शामगांवकर के स्वर में। रचनाकार हैं संत तुलसीदास, संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

रविन्द्र खासनीस के संगीत निर्देशन में अभी आपने संत तुलसीदास की भक्ति रचना सुनी, जिसे गाया है सुहास श्यामगांवकर ने। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति पर रचना सुनते हैं समूह स्वर में।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति पर रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जानकी अय्यर ने।

जानकी अय्यर ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत भानुदास की। आइए सुनते हैं समूह स्वर में, स्वरबद्ध किया है बाल माली ने।

संत भानुदास की ये भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे बाल माली। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुनील पासलकर के स्वर में। यह रचना है संत मुक्ताबाई की।

संत मुक्ताबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुनील पासलकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में। ये रचना है रमन रणदिवे की।

रमन रणदिवे ने लिखी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी अनुराधा मराठे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है श्री गिरीश ने।